सरगम के सभी श्रोताओं को इंदु का नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। प्रोग्राम के इस भाग में आपने गैस कर ही लिया होगा, आज जो है सावन के गाने चल रहे हैं। वैसे आज बाहर धूप निकली हुई है क्योंकि ये सावन का मंथ है, एंड आई थॉट दिस इज अ टाइम टू प्ले सम ऑफ दीज ब्यूटिफुल सावन सॉन्ग्स। तो आज का टॉपिक है सावन। आपको अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए, चाहे वो सावन हो या बढ़ते हो या ना बढ़ते भी हो, आप किसी भी तरह का गाना सुनना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। नंबर है 5198074150। अपने स्पॉन्सर के बारे में और अपने कम्युनिटी के न्यूज के बारे में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, बट लेट्स कीप एंजॉयिंग दिस सावन सॉन्ग्स। ये जो भी आपने सुना ये था फिल्म मिलन का गाना, आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। और अगला जो गाना है वो है कश्मीर की कली से, दीवाना हुआ बादल। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम सरगम, जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। प्रोग्राम के इस भाग में आज आप सुन रहे हैं सावन के ऊपर कुछ गीत। ये जो महीना जो है मंथ ऑफ अगस्त इज सावन मंथ, इसमें कई तो फेस्टिवल आते हैं और कई जो हैं एक्चुअली लॉट ऑफ बर्थडेज आई नो इन माय फैमिली इटसेल्फ देयर आर 5 or 6 बर्थडेज दिस मंथ। बहुत ही पॉपुलर महीना है इन सेलिब्रेशंस के लिए। राखी का वो आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे है, अगला जो संडे है दैट विल बी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो सावन के गीत कुछ आप सुन रहे हैं। आप 10 बजे के बाद आपकी फरमाइशी पूरी होंगी अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। फ़ोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5198074150।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:02 हुए हैं और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 से लेकर 12 तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। इस भाग में आज आपने सुने सावन के ऊपर कुछ गीत, काफी खूबसूरत गाने, बहुत गाने हैं। द ओनली इशू आई हैड विद दीज सॉन्ग्स, देयर नन ऑफ देम आर लेस देन 5.5 मिनट्स। सो होता क्या है कि अगर गाने छोटे हों तो ज्यादा आते हैं आधे घंटे में, और अगर लंबे हों तो थोड़ा कम आते हैं। सो दैट्स व्हाट हैपन। एक गाना काफी देर तक चला तो कुछ कम गाने चले हैं सावन के, बट आई होप यू एंजॉय दोस। अब समय है आपकी फरमाइशें पूरी करने का, अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप मुझे फोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5198074150। लेट मी टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर्स। आवर फर्स्ट स्पॉन्सर्स ओंकार फूड्स, दे हैव 3 लोकेशंस टू सर्व इन किचनर वाटरलू। 101 हेजल ग्लेन ड्राइव किचनर, 500 ग्लेन फॉरेस्ट बुलेवार्ड इन वाटरलू, एंड 1541 हाईलैंड रोड वेस्ट इन किचनर। There you can find fresh vegetable produce, everyday cooking essentials, and freshly cooked meals. Everything, every one-stop shop for everything there. So, and the Kitchener store also have clothing in and Rakhi and Puja and everything. All those are available there as well. So that's Onkar Foods and 3 locations in Kitchener Waterloo. The next sponsor is IBU Opticals. They have been part of our community for many, many years. They're offering wide range of glasses, contact lenses, and sunglasses. They have largest selection of designer brands at great prices, excellent service. Located at 90 Weber Street in Lincoln Plaza in Waterloo, contact Amin or Shamira at 519-725-2122. And the next sponsor is Onkar Foods. I think I am going in loop here. Pardon me. The next sponsor is Indian Spice. Their location is 373 Bridge Street in Waterloo. That is Bridge Street and Devonport intersection. And they are experts in South Indian food. South Indian dosa is not just a meal. It's part of everyday life. Simple ingredients, time-honored methods, and a taste that carries generations. That's their motto. And their number is 226-336-9959. So, ye to the hamare sponsors. Since I am talking here, let me also tell you about India-Canada Association will be celebrating their Mela on September 13th at Kitchener City Hall. And if you want to be a sponsor or would you like to be a vendor, you can be a food vendor. You have anything you would you like to sell there, you can be a vendor. Contact them, hello@icawaterloo.com. So that's their ID. जो गाने आपने भी सुने थे उन्हें मैंने चुना था फिल्म मिलन, कश्मीर की कली, आया सावन झूम के, रोटी कपड़ा और मकान, जुर्माना और छोटे नवाब से। गायक कलाकार थे सरप्राइजिंगली एंड नॉट सरप्राइजिंगली लता मंगेशकर, मुकेश, आशा भोसले और मोहम्मद रफी। अगला जो गाना आप सुनने जा रहे हैं वो है फिल्म चुपके चुपके से। सिंस सावन इज अ थीम, आई थॉट आल प्ले अ सॉन्ग एज वेल। सावन थीम है, गाना है अब के सजन सावन में। बहुत ही खूबसूरत गाना है, लता जी की आवाज। फिल्माया गया था शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र के ऊपर। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई विल बी बैक विद योर रिक्वेस्ट। नंबर आपको पता ही है 519-807-4150।

एंड लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ टूडेज प्रोग्राम. जो आज की पहली फरमाइश है वो है मिसेस मलिक लाउजी की, और उन्होंने फरमाइश करी है सत्यमेव जयते के इस गाने की. और आवाज़ जो है इसमें वो है भप्पी लारी. म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया था इस फिल्म में, और आवाज़ भी उन्हीं की है. सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें मैं कैसे चाहूँ.

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ. द नेक्स्ट रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम अजय फ्रॉम मिसिसागा. हैप्पी बर्थडे विशेस गो टू राणा बागदाद फ्रॉम मॉम डैड सिस्टर फ्रेंड्स एंड स्पेशली फ्रॉम जे. ही रिक्वेस्टेड अ पैपी सॉन्ग, लेट्स अ फास्ट सॉन्ग फॉर सेलिब्रेशन फॉर सिंस ही इज अ यंग मैन, यंग फ्रेंड. सो हियर आई पिक्ड अ सॉन्ग फ्रॉम फिल्म याराना, चमकती शाम है. जे, एंजॉय दिस सॉन्ग एंड आई होप योर फ्रेंड एंजॉयज इट एज वेल. हैप्पी बर्थडे टू राणा.

चलते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ, और वो है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विशेस गो आउट टू रोजी पुरी. दिस वॉज सपोज टू बी अ वीक वेन माई माइक्रोफोन वॉजेंट वर्किंग एंड आई अपोलोजाइज आई डिंट प्ले इट लास्ट वीक. सो रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्टेड बाई जे अगैन. सो जे, हियर इज योर रिक्वेस्ट फॉर योर बुआ. हैप्पी बिलेटेड बर्थडे विशेस गो आउट टू रोजी फ्रॉम मम, अनिल, जैसिका, राहुल, लकी, अनु, जे एंड मोहित. So let's enjoy this beautiful song from film Rustam. Voices are Atif Aslam and Manoj Montesar. It's Tere Sang Yara, Khush Rang Bahara. It's a beautiful song, and happy birthday, Rosie. I wish you many, many more happy returns of the day.

चलिए अब चलते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ. अगली फरमाइश है सुषमा जोशी जी की और उन्होंने फरमाइश करी है गाने की, अगर तुम ना होते. फिल्म का नाम भी यही है, अगर तुम ना होते. आवाज़ है किशोर कुमार जी की और म्यूज़िक है आर डी बर्मन का.

अगली जो फरमाइश है वो है सरोज चोपड़ा दीदी की, प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर हर. फिल्म इज सीमा एंड दिस सिंगर इज मन्ना डे. बहुत ही खूबसूरत गाना है दीदी, एंड आई होप यू एंजॉय इट.

एंड आई एम बैक. माफ कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है गाने में, इवन दो इट इज आई एम बाइंग म्यूजिक ऑनलाइन. सो आई एम चेंजिंग द सॉन्ग फॉर सरोज चोपड़ा दीदी एंड शी इज लिसनिंग फ्रॉम मिसेस सागा. होप यू एंजॉय दिस वन. दिस इज लता मंगेशकर, आपकी नजरों ने समझा.

आपने शायद गाना गेस कर लिया होगा कौन सा गाना है. दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर शीला. बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है शीला. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एंड आई थिंक आई वॉज सेविंग इट फॉर द एंड ऑफ द प्रोग्राम बट दिस इज परफेक्ट टाइमिंग फॉर इट टू. सो चलिए शीला की पसंद पर सुनते हैं रिमझिम गिरे सावन. फिल्म है मंजिल, आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की और बहुत ही खूबसूरत गाना है. आर डी बर्मन का म्यूजिक है. लेट्स ऑल इन्जॉय दिस वन एंड आई नो इट्स अ सनी डे आउटसाइड बट वी आर प्लेइंग सावन सॉन्ग सो लेट्स कंटिन्यू विद इट फॉर अनदर हाफ आवर. उसके बाद में जो 11:30 बजे के बाद आप कुछ भी म्यूजिक में जो लगाऊंगी मैंने आपके लिए आधा घंटा तैयार किया है. विल जस्ट प्ले दैट वन. सो ये जो आधा घंटा है यही है सिर्फ सावन के गानों का. सो लेट्स इन्जॉय दिस वन रिमझिम गिरे सावन.

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:58 हुए हैं, दैट इज 10:58, एंड लेट मी जस्ट डू द इंट्रो वन मोर टाइम बिकॉज एवरी हाफ आवर आई एम सपोज टू डू दैट. सो एक बार फिर से आपको बता दूं, आप सुनते हैं इस प्रोग्राम को हर रविवार की सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से. अब मैं हंस रही थी क्योंकि आप सभी को तो पता ही है, लेकिन इनकेस कोई बीच में कहीं से ज्वाइन कर जाए, किसी आपने किसी को बताया हो गाने सुनने के लिए, दे नीड टू नो कि कहाँ से सुन रहे हैं इन गानों को. सो That's why we have to give introduction. प्रोग्राम के इस भाग में आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के कुछ गीत. अब समय है अपने स्पॉन्सर्स का एक बार फिर से धन्यवाद करने का, अपना कम्युनिटी न्यूज देने का. उसके बाद आपके गाने चलते रहेंगे. हमारे आज के स्पॉन्सर हैं ओंकार फूड्स. दे हैव 3 लोकेशंस टू सर्व इन किचनर वाटरलू. 101 हैजल ग्रैंड ड्राइव किचनर, 500 ग्लेन फॉरेस्ट बुलेवार्ड वाटरलू, एंड 1541 Highland Road West in Kitchener. Hamare agle sponsor hain IV Opticals, located at 90 Weaver Street in Lincoln Plaza. You can contact Amin or Shamira at 519-725-2122. And the next sponsor is Indian Spice, located at 373 Bridge Street in Waterloo, and their number is 226-336-9959. तो ये तो थे हमारे स्पॉन्सर्स. इंडिया कैनेडा एसोसिएशन का जो मेला है वो है 13th of September. मार्क योर कैलेंडर्स इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट. यू कैन कॉन्टैक्ट दैम hello@ICAWaterloo.com. तो ये तो थे आज की इन्फॉर्मेशन. गाना चलाते हैं आगे. सावन के गीत चल रहे हैं, एक गाना और सावन का, उसके बाद आपकी फरमाइशें चलती रहेंगी. मेरे पास सिर्फ एक फरमाइश की जगह और बची है. अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें जरूर फोन करिए 519-807-4150. जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दैट नेक्स्ट संडे इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बिकॉज इट इज going to be 16th and 15th is our India's Independence Day. So we will be celebrating that. But abhi jo chal raha hai Saavan ke gaane, agla gaana hai Chingari Koi Bhadke. His film is Amar Prem. Aawaz hai Kishore Kumar ji ki.

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ. राकेश शर्मा भाई साहब की पसंद पर सुनते हैं मेहदी हसन को शमा मोहब्बत में, शमा ए मोहब्बत में. बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रही हमेशा इनकी, बहुत ही खूबसूरत गज़लें इन्होंने गाई हैं. सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ गज़ल.

That was beautiful, गजल. एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रिक्वेस्ट. हबीबा जी की पसंद पर सुनते हैं, अगर तुम मिल जाओ. और गाना है फिल्म जहर से, आवाज़ है रूप कुमार राठौड़ की.

और आज के प्रोग्राम की आखिरी फरमाइश है मिसेस सुजानी की. उन्होंने फरमाइश करी है इस गाने की, लग जा गले से. लता जी का क्लासिक सॉन्ग है, फिल्म है वो कौन थी. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई डोंट नीड टू से मच. इट्स फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग. सो लेट्स ऑल एंजॉय दिस वन. एंड थैंक यू मिसेस सुजानी फॉर कॉलिंग. एंड आई एक्सपेक्ट यू कॉलिंग लिटिल बिट मोर देन जस्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक. एंड इट गोज सेम फॉर द अदर लिसनर्स टू. इफ यू आर लिसनिंग वंस इन अ वाइल यू शुड कॉल इन और मैसेज मी. That makes me feel like you are listening to the show, because this next half hour is added because of some listeners' request. So let's just hear from you once in a while. So let's enjoy this beautiful song, Lag Ja Gale Se Phir Ye Hasi Raat Ho Na Ho.

इसी के साथ सरगम प्रोग्राम में मेरा आपसे बात करने का समय खत्म होता है, लेकिन प्रोग्राम 12 बजे तक चलता रहेगा, आप सुनते रहिएगा। पहला गाना जो है थोड़ा सा फास्ट सॉन्ग है, सो डोंट थिंक ऑल द सॉन्ग्स आर गोइंग टू बी लाइक दैट, बट देर आर सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन देर, देर नॉट वेरी ओल्ड, बट दिस इज फ्रॉम माई लिस्ट फ्रॉम 2024, देर आर सम सॉन्ग्स फ्रॉम देयर एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दोज सॉन्ग्स, सो कीप लिसनिंग। प्रोग्राम समाप्त करने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू टू ओंकार फूड्स, आई व्यू ऑप्टिकल्स एंड इंडियन स्पाइस। थैंक धन्यवाद आपका भी, साथ देते हैं, बात करते हैं, गप्पे मारते हैं, जो लोग मैसेज भी कर देते हैं चलता है, जो लोग बातें करते हैं वो और भी अच्छा चलता है। थैंक यू अगेन। अगर आप नहीं भी करते हैं और प्रोग्राम को सुनते हैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब समय है अपने आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड, समय है एक बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आपके लिए ढूंढ रही थी एंड आई फाउंड इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये गाना जो है ये सुवैन के लिए है और ये आप सबके लिए है, आई एम प्लेइंग क्योंकि सावन के गाने थे और ये बारिश है, सावन है ऑल टुगेदर, आई एम जस्ट प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर यू। बारिश के गाने किसी दिन और चलेंगे लेकिन ये वाला गाना जरूर सुनिएगा। आवाज़ है लता मंगेशकर जी की और तलत महमूद की, बहुत ही खूबसूरत है आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आई होप यू इन्जॉय दिस सॉन्ग, आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो इसी शुभकामना के साथ आप सभी दिलाना चाहूंगी। इंदु को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आई एम बैक. आई डिडंट टेल यू द सिंगर्स लता मंगेशकर, तलत महमूद जी की आवाज. आई डिड टेल यू दैट मच. फिल्म का नाम है उसने कहा था और म्यूजिक है सलिल चौधरी जी का.